अपना स्टॉल्स यहाँ पर आप डालना चाहते हैं टू शोकेस आइटम्स दैट यू हैव टू सेल देम देयर, वेल यू हैव टू गेट इनटू कांटेक्ट विद शिवानी अरोड़ा ऑन 0218700012 या फिर शांति रवि को आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0212946394 पर। इसके अलावा 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे, दिस इज हैपनिंग ऑन सैटरडे 16th में, आने वाले शनिवार को मलयोला कम्युनिटी सेंटर 16 वोकौरी प्लेस मांगरे ऑकलैंड में शाम 4:30 बजे से 8:30 PM के बीच में यहां पर प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें कैंडल कोमेमोरेशन, आर्टिफैक्ट डिस्प्ले, सीनियर्स रिकॉग्निशन अवार्ड होने वाले हैं। इसके साथ में कल्चरल परफॉर्मेंसेस दैट अलाइंस विद द टाइम ऑफ गिरमिटियस। तो अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि गिरमिट कौन सा समय था, वेल दिस इज़ योर चांस टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ फिजियन इंडियंस, क्योंकि शायद आपने फिजी के बारे में सुना है लेकिन सोचते हैं कि यार फिजी में इतने सारे इंडियंस कैसे, क्यों, कब, कहां से आए। वेल इंडिया से ही आए हैं, लेकिन कब आए हैं, क्यों आए हैं और कैसे अपना झंडा गाड़ा है इन फिजी, और फिजी से निकल कर अब दुनिया भर में फिजी इंडियंस आर डूइंग रियली वेल। तो ये सब जानने के लिए यू हैव टू बी एट दी 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे हैपनिंग 16th मई अगले शनिवार को मलयोला कम्युनिटी सेंटर पर। हमारे साथ यूं ही आप बने रहें, क्योंकि द ग्रैंड मस्टी नाइट क्या है, वाइव मिक्स, ये हंगामा मचाने वाला है बहुत ही जल्द ऑकलैंड में। इसके बारे में जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे।

0: Radio Pump.
1: All right, before we head into the next song, aapko hum batana chahte hain about the newest or ya phir jo halchal machane wala event aane wala hai right here in Auckland. Well, kya hone wala hai Vibe Mix Events dwara? Shayad aapne suna hai iske bare mein, nahi suna hai to well, agar aap Fiji se hai and if you loved Satyanand and Jay Bhaiya ji doing their 5 to 6 masala mix on Radio Naftarang, well, that is happening live on stage very soon. Vibe Mix event, inke dwara the Grand Masti Night, ye laya ja raha hai featuring renowned RJs from Fiji, Satyanand, Jay Bhaiya ji and Rowdy Naman. Inko aap dekh sakte hain together with Charfer. Now, Charfer ye ek aisa naam hai jo Fiji mein to bahut hi mashhoor hai hi, lekin New Zealand mein bhi कई मर्तबा इन्होंने आकर परफॉर्म किया है एंड अब 17 सालों के बाद चर्फर इज कमिंग बैक टू न्यूजीलैंड. तो जैम पैक ऑफ टैलेंट ये आ रहे हैं, इसमें ड्यूअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा जो बहुत फीमेल और मेल वॉइस में गा सकते हैं एंड आवा आउन केतन भी ऑन स्टेज परफॉर्म करने वाले हैं टुगेदर विद युवा डांस ग्रुप NZ एंड अ लिस्ट ऑफ DJs जिनको आप लाइव एंजॉय कर सकते हैं इन दिस द ग्रैंड मस्ती नाइट. इस रात को एक तो आप एंटरटेनमेंट एंजॉय करेंगे, इसके साथ साथ में कई सारे इनाम, कई सारे गिवअवेज आप जीत सकते हैं थैंक्स टू मलबा गोल्ड एंड डायमंड्स, इनकी ओर से वाउचर्स है, रॉयल गोल्ड हेम्पर पैक्स है, ग्रीन हॉर्न गिफ्ट हेम्पर पैक्स है और विकेट चिकन बोटनी की ओर से बहुत सारे फूड वाउचर्स भी आप जीत सकते हैं ड्यूरिंग द शो. फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स विल बी ऑल्सो सोल्ड फ्रॉम सिंपली डिवाइन. इनके खाने हमने खाए हैं एंड वंस यू ट्राई दियर फूड यू विल बी हुक्ड ऑन एंड लिका विल ऑल्सो बी सोल्ड एट द वेन्यू. ये बात सीक्रेट है. वेल, फ्री पार्किंग और सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी. टिकट्स ये VIP टेबल सीटिंग के आधार पर बेचा जा रहा है, $50 है एंड स्टैंडर्ड टिकट्स आर $30. टिकट्स आर अवेलेबल एट हंटर्स फूड टाउन पापाटोटोए, जेस फ्रेश मार्ट पापाटोटोए, गेट फ्रेश सुपर मार्केट मांगरी, केस एंड हेयर ब्यूटी सलोन मनोरेवा, विकेट चिकन बोटनी डाउन्स ब्रांच में, जेंडर हेयर एंड ब्यूटी सलोन केवेंडिश ड्राइव में, इन सारे जगह से आप टिकट्स खरीद सकते हैं एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू बी अ सेल आउट शो. 23rd of May, Netball Hall, Manurewa में tickets आप ले लें क्योंकि doors open होंगे 6 PM पर and I don't think you'll be able to get tickets on the day क्योंकि these are going to be sold out.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Streaming on Rover.
1: So you're trying to eat less meat, but you're no Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Mmm, smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
2: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
3: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
4: That is right. It's me, Jikash, humming along with you on Radio Pub. And आज है Saturday और जब weekend आ जाता है तो ढेर सारे खेल कूद की खबरें आप तक हम लेकर आते हैं, क्योंकि आपके favourite teams, आपके most feared teams के against खेलते हैं. जैसे कि कल हुआ खेल between Crusaders and Blues, and what a match that was. इतना आसान कर दिया था Crusaders ने Blues के लिए कि भाई आओ, try बनाओ. 13 प्लेयर्स से खेल रहे थे गेम खत्म होते होते, लेकिन ब्लूज की तो हक्की बक्की बनती. तो कल शानदार जीत हुई है क्रुसेडर्स की ओवर ब्लूज. और कौन कौन सी टीम ने कल खेला है इसके बारे में जानकारी बस थोड़ी देर में. ए लीग के मैचेस भी आज होने वाले हैं राइट हियर इन आवर बैकयार्ड. गो मीडिया स्टेडियम पर ऑकलैंड फुटबॉल क्लब और एडिलेड यूनाइटेड आज 6 PM पर खेलने वाले हैं. इस पर भी बहुत सारी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Bunnings gift card is a great gift for Mother's Day because it unlocks the whole warehouse for Mum. She's in for a treat. She'd be like, oh my gosh, yes, now I can buy all those extra plants that I was looking for the front garden. Perfect. Bunnings
2: Warehouse. Before winter really sets in, make sure your windows and doors are ready. From drafty window gaps to doors that won't close properly, Exceed fixes windows and doors to help keep your home warm. Call 0800 Exceed.

0: Yo.
1: Big Radio Pub. You're listening to Chikash.
2: यू आर सेलिब्रेटिंग योर लिटिल विंस ऑफ द वीक, तो आपको हम बधाई देना चाहते हैं. शायद आपने छोटे मोटे कुछ टारगेट्स रखे थे जिसको आपने अचीव किया है, वर्किंग टूवर्ड्स योर बिगर एम फॉर द फ्यूचर फॉर द ईयर. शायद आपने कुछ इस साल के लिए बड़ा एम किया है और इसके लिए छोटे छोटे गोल्स आपने सेट किए हैं, विच इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड. क्योंकि एक लागे ही एक समय पर अगर आप एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, उसको वहाँ तक पहुँचना शायद बहुत ही मुश्किल होता है. लेकिन उस लक्ष्य के लिए छोटे छोटे गोल्स अगर आप सेट कर देते हैं, वीकली, मंथली या फिर बाय मंथली, तो शायद इनको हासिल करना और आसान हो जाता है. तो वट एवर यू आर डूइंग, आई होप यू आर विनिंग इन लाइफ. आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं ऑन हम 104.2 FM और रोबा पर. मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. नाउ देर आर लॉट ऑफ मैचेस हैपनिंग राइट हियर इन ऑकलैंड टुडे. सुखा की ओर देखें तो एक तो आई लीग के बारे में हमने आपको बताया, ऑकलैंड फुटबॉल क्लब और एडिलेड यूनाइटेड प्लेइंग एट द गो मीडिया स्टेडियम टुनाइट एट 6 PM. लेकिन उससे पहले OFC प्रोफेशनल लीग भी जारी है एंड नाउ ऑकलैंड फुटबॉल क्लब आज खेलने वाला है बुला FC से. अब लोग सोचेंगे कि 3:30 ऑकलैंड फुटबॉल क्लब बुला FC से खेल रहा है और फिर 6 आई लीग में खेल रहा है. वेल, इनके दो टीम हैं, द एलीट टीम इज़ प्लेइंग इन आई लीग और फिर उसके बाद वाली टीम ऑकलैंड फुटबॉल क्लब की इज़ प्लेइंग अगेंस्ट बुला फुटबॉल क्लब एट 2:30 PM एट ईडन पार्क. नाउ दिस गॉट मी थिंकिंग, क्यों आई लीग ईडन पार्क पर नहीं हुआ एंड क्यों OFC गो मीडिया स्टेडियम पर नहीं हुआ? वेल, दैट इज़ बिकॉज OFC प्रो लीग के आज दो मैचेस होने वाले हैं. द फर्स्ट वन ऑकलैंड फुटबॉल क्लब वर्सेस बुला FC, द सेकेंड वन साउथ मेलबर्न फुटबॉल क्लब वर्सेस साउथ आईलैंड यूनाइटेड हैपनिंग एट 6:30 PM. तो जितने भी सोका फैंस हैं, यू हैव अ क्रेजी सैटरडे टू फॉलो ऑल योर लेटेस्ट बैकयार्ड सोका जो ऑकलैंड या फिर पैसिफिक नेशंस में होता है, दैट इज़ OFC प्रो लीग और उधर आई लीग के भी खेल होने वाले हैं. तो किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, डू लेट मी नो, क्योंकि काउच कोच बनने का मौका इस घंटे पर आपको हम देने वाले हैं एंड विल सून ट्राई टू गेट इन कॉन्टेक्ट विथ आवर ओन काउच कोच अभी से एंड देखेंगे कि वो आज क्या कहने वाले हैं. स्वागत कर रहे हैं आप सभी का ऑन हम

0: Radio Pub.
1: ऑलराइट तो ए लीग ये अब सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुका है एंड सेमीफाइनल्स इफ यू हैवन्ट बीन फॉलोइंग ए लीग दिस इज प्लेड ऑन अ होम एंड अवे बेसिस दिस इज वीक वन जहां पर ऑकलैंड फुटबॉल क्लब एडिलेड यूनाइटेड को होस्ट कर रहा है एंड टुनाइट लेटर सिडनी फुटबॉल क्लब न्यूकासल जेस्ट्स को होस्ट कर रहा है उसके बाद में लेग टू ये खेला जाएगा ऑन कमिंग फ्राइडे 15th मई को एडिलेड यूनाइटेड और ऑकलैंड फुटबॉल क्लब ये ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले हैं और न्यूकासल जेट्स एंड सिडनी एफसी न्यूकासल जेट्स आर होस्टिंग सिडनी ऑन द 16th ऑफ मई 9:40 PM पर तो ऑल द बेस्ट हम कहना चाहते हैं टू आवर ओन ऑकलैंड फुटबॉल क्लब एंड मे दे गेट अ विन आउट ऑफ टुनाइट्स मैच आप क्या चाहते हैं आप भी हमें बता सकते हैं इसके अलावा NRL और सुपर रग्बी के भी मैचेस होने वाले हैं टुनाइट हुम आर यू पुटिंग योर मनी ऑन कल के बारे में बातें करें तो 36-20 से क्रुसेडर्स ने ब्लूज को रौंदा है और फिर उसके बाद चीफ्स की शानदार जीत हुई है ओवर द रेड्स तो ऑल इन ऑल द रेड्स they came sorry the chiefs came over the reds and crusaders came over the blues aaj 4:35 PM par highlanders aur waratahs aamne samna karne wale hain mona pacifica aur hurricanes aaj 7:05 PM par khelenge and brumbies and force in australia playing at 9:35 PM is par bhi details aur updates hum post karte rahenge on our socials

0: Yo. Big Radio Pub. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
1: एक बजकर 22 मिनट हो चुके हैं. मैं जिकाश एंड आपके साथ रेडियो पब का मजा मैं भी ले रहा हूँ. नाउ ऑकलैंड में हैं आप तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक मंथ है द मंथ ऑफ जुलाई, सॉरी द मंथ ऑफ मई इज एनजेड म्यूजिक मंथ. और इसके लिए हम आपको अर्ज कर रहे हैं कि आप अपना हुनर हम तक पहुँचाएं, ताकि अगर ये हुनर हमें ठीक लगा, हमें अच्छा लगा, तो हम आपकी आवाज़ को, आपके गानों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना चाहते हैं. तो बस आपको हमारे तक अपनी रिकॉर्डिंग भेजनी है. एंड इफ़ यू हैव डन सो, वेल कीप लिसनिंग टू अस, क्योंकि अगर आपके गाने बजते हैं देन हमारे लिसनर्स के पास मौका है, दे कैन वोट फॉर योर सॉन्ग्स. मैं ये है एनजन म्यूजिक मंथ और हियर एट हम We are promoting our local talent with Back Your Backyard Beats. This isn't just about listening to music, it's about जो music आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप अपना support दे सकते हैं. All month long we will be playing tracks from our local artist. अभी तक आपने कई लोगों को सुना है, हमारे social media platform पर हमने snippets डाले हैं. तो अगर आपको ये गाने अच्छे लगते हैं, 8 बजे सुबह, 11 बजे, 2 बजे, 5 बजे और 10 बजे एवरी वीकडे हम अपने लोकल आर्टिस्ट के गाए हुए गाने बजाते हैं. एंड अगर आपको वो गाने अच्छे लगते हैं, यू हैव द चांस टू वोट. 5599 पर MM लिखकर आपको वोट करना होगा फॉर द सॉन्ग और फॉर द आर्टिस्ट दैट यू वांट टू सी फीचर्ड इन द फाइनल्स. और फिर फाइनल में जाकर इनको हैम्पर प्राइजेस हम देना चाहते हैं. एंड आपके ज़रिए इनको और भी बड़ा स्टेज मिलने वाला है और भी सपोर्ट मिलने वाला है. एंड क्यों नहीं, अगर आप खुद एक आर्टिस्ट है, आपको अगर सपोर्ट दिया जाए, आपके हुनर को लाइक किया जाए, तो आपको और भी हौसला मिलता है टू डू मोर. अगर आप खुद एक आर्टिस्ट है एंड यू गोट योर ओन ओरिजिनल म्यूज़िक, अभी भी आपके पास समय है, यू कैन सेंड योर रिकॉर्डिंग टू buzz@humfm.com. छोटा सा आप एक बायो बनाएं कि आप कौन हैं, आपके गाने किस चीज़ के बारे में, कैसे रिकॉर्डिंग हुई, अ बैकग्राउंड स्टोरी, एंड सेंड इट टू buzz@humfm.com एंड वी विल फीचर देम ऑन एयर. MM लिखकर 5599 पर आप मैसेज करें एंड वी विल सेंड यू द लिंक एज वेल.

0: Yo.
1: Radio Pub.
0: रेडियो पॉप का मजा आप ले रहे हैं. एन जेड म्यूजिक मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई, और इसको लेकर कई सारे जगहों पर कई सारे सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं जिसके बारे में जानकारी आपको हम प्रदान करते चलेंगे. वैसे रिदम नेशन विद तेफारे कारियोई, दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग. ये शुरू हुआ है आज 9 मई 2026 को और 11 AM से 12 PM के बीच में होता है एवरी सैटरडे फॉर दिस मंथ. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है जहाँ पर यू कैन ज्वाइन the team for a vibrant interactive performance celebrating Maori music and movement as part of NZ Music Month. This is led by Tefari Kariwai from the heart of Ngāti Whātua Ōrākei. Aur yahan par each performer descends from the eponymous ancestor to Pereere. So a great opportunity to learn about the Maori culture through music. Aur yahan par फ्री ये जो फ्री लॉन्ग आवर लॉन्ग सेशंस है, दिस विल शोकेस ताउंगा पुखाया पुतातारा तायाहा पोई एंड हाका विद अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट एंड लर्न अबाउट द कल्चरल सिग्निफिकेंस बिहाइंड ईच आर्ट फॉर्म. हाका आपने बहुत बार देखा होगा, पोई इसका परफॉर्मेंस भी आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री क्या है ये जानने के लिए दीज आवर

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Poke Koi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel. Or tuck into beef enchiladas, tender pulled beef, soft tortillas and bright tangy sauce. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
6: Danny didn't think he needed a DVS system.
7: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
6: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
7: Nah, only one room. It was just too noisy.
6: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा. जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर.
9: Get it sorted with Cheap As Deals. Grab a hot deal with over 30% off selected Nuvo hot water bottles, now just $9. And 10 centimetre Flora Viva flower plants, now only $2.50 each. Limited stock, Cheap As Deals. End Sunday at Mitre 10.
10: Mum's the word, and Briscoe's is the place to send them this Mother's Day weekend. With a mum-believable 30 to 50% off store-wide and incredible savings on gifts. Mum's the word, and Briscoe's is the place. See online for T's and C's.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
11: Yo. Big Radio Pub. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
13: रोवर पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. रेडियो पब का मज़ा आप ले रहे हैं, एंड थोड़ी देर में आपके लिए हम एक छोटा सा कंपटीशन लेकर आएंगे. फॉर राहत फ़तेह अली खान लाइव इन ऑकलैंड. इसके लिए पासेस आपको हमें देना है और आपको ड्रो में हमें शामिल करना है. वैसे आपको हम बता दें कि वेट ये ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया सी रात आप इंजॉय करने वाले हैं विद द लेजेंडरी राहत फ़तेह अली खान जब ये स्टेज पर आएंगे ऑन 25th of July एट द ट्रस्ट एरेना. ये तो भाई एक वेन्यू ही हो चुका है फॉर ऑल कॉन्सर्ट्स फ्रॉम बॉलीवुड. तो एक बार फिर से राहत फ़तेह अली खान यहाँ पर आने वाले हैं 25th July को, और आपको विटनेस करना है This awesome night that is brought to you by JK Productions, JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Productions and Shahzada Production. Ye tickets kahan par lene hain? Tickets are being sold on the website drytickets.com. Aur iske liye aapko hum double pass dena chahte hain. To thodi der mein Rahat Fateh Ali Khan ka ek snippet hum bajayenge. गाने का एक पार्ट हम बजाएंगे, आपको गौर से सुनना है और फिर हमें बताना है कि व्हाट्स द नेक्स्ट लाइन इन दैट सॉन्ग. हम मुखड़ा बजा सकते हैं, हम स्टांजा या फिर वर्स में से कोई भी लाइन बजा सकते हैं. देखते हैं कि आप राहत फ़तेह अली खान के गानों को कितनी बारीकी से जानते हैं. तो बस अपनी दिमाग को दौड़ाने के लिए तैयार हो जाए, और थोड़ी देर में ये कॉम्पिटिशन आपके लिए हम शामिल करेंगे.

0: You're listening to Chikash.
1: Alright, तो राहत फतेह अली खान कॉन्सर्ट, इसके लिए डबल पासेस आपको हम देना चाहते हैं एंड इसके लिए ड्रॉ में आपको शामिल होना होगा. तो रूल्स ये है कि जब हम सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब आपको भेजना है बाय राइटिंग RFK, दैट इज़ राहत फतेह अली खान, RFK लिखे एंड देन उसके बाद में आप लिखे द नेक्स्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग. हम थोड़ा सा बजा कर छोड़ेंगे, उसके बाद में क्या लाइन आता है ये आपको हमें बताना है. तो आर यू रेडी? बहुत ही प्यारा सा ये गीत है और वन ऑफ माई फेवरेट्स एज वेल. इनमें से एक अंतरे से हमने थोड़ा सा स्निपट हम आपको सुनाएंगे और अगला लाइन आपको हमें बताना है. तो सुनिए और बताएं कि अगला लाइन क्या है. इसके बाद क्या लाइन आता है? 5599 पर आपको जवाब भेजना है. दोबारा आपको हम सुना रहे हैं, सुने और बताएं कि राहत फतेह अली खान नेक्स्ट लाइन क्या बोलते हैं.
2: नींद का सौदा करे.
1: इसके बाद में क्या? RFK लिखे, नेक्स्ट लाइन लिखे, अपना नाम जरूर लिखिएगा और सेंड इट टू 5599. देखते हैं राहत फतेह अली खान के गानों को आप कितनी अच्छी तरह से जानते हैं.

0: Yo. Big Radio Pub. रेडियो पब का सफर जारी है 9th of May 2026. किसी ने लिखा है कि टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे एट स्काई सिटी, लेकिन इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है. कौन है भाई आप, बहन या आंटी अंकल, जो भी हो, आपको अ वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे हम विश कर रहे हैं फ्रॉम द होल टीम ऑफ हम. आशा करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत ही खूबसूरत जाए, आपको प्यार प्यारे तोहफे मिले, अपने और अपने का प्यार मिले, खुशियाँ जितनी आज आपको मिल रही है साल भर उतनी ही खुशियाँ आपको मिलती रहे और कामयाबी के शिखर तक आप पहुँचे इन दिस कमिंग ईयर. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. तो इस तरह से आप भी अपना मैसेज हमारे पास भेजे अबाउट योर बर्थडे. प्लीज़ राइट योर नेम. अगर आपके चाहने वालों का बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, उनको आप स्पेशल फील कराए बाय डेडिकेटिंग देयर नेम राइट हियर ऑन हम, एंड आपकी खुशियों को और भी बढ़ चढ़ कर आप तक हम पहुंचाने वाले हैं ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा. तो बारी बारी से हमारे पास मैसेज करते रहें. और जो कॉम्पिटिशन हमने शुरू किया है अबाउट राहत फ़तेह अली खान, इसके लिए काफ़ी लोग जानते हैं कौन सा गाना है, लेकिन ये नहीं जानते कि गाने को जहाँ पर हमने रोका है उसका नेक्स्ट लाइन क्या है. तो आइए दोबारा आपको सुनाते हैं. आपको गाने का टाइटल हमारे पास नहीं भेजना है, आपको हमें ये बताना है कि अगला लाइन गाने में कौन सा आता है. तो सुने और हमें बताएं. 5599 पर RFK लिखे, द नेक्स्ट लाइन आफ्टर दिस कौन सा है. As soon as I play this,
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है.
2: आनंद का सौदा करे.
0: इसके बाद क्या होता है, कौन सा लाइन आता है, ये आपको हमें बताना है 5599 पर. दोबारा सुने एंड हमें आप जरूर बताएं.
2: आनंद का सौदा करे.
0: What's the next line in this song? 5599 पर RFK लिखे प्लीज, नोट RFI, नोट RFF. RFK लिखेंगे तभी आपके मैसेज को हम ड्रॉ में शामिल कर पाएंगे. RFK स्पेस नेक्स्ट लाइन इन द सॉन्ग स्पेस अपना नाम भी आपको लिखना है. 02174 से इमाम खान आपका मैसेज हमें मिल चुका है. अमीरा है, आपका भी मैसेज आ चुका है. तो अपना जवाब हमारे पास आप भेजते रहे. फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं अनदर ट्रैक फ्रॉम राहत फतेह अली खान स्टार्टिंग ऑफ दिस आवर.

0: yo.
1: Big Radio Pub. You're listening to Chikash.
2: सवाल का जवाब आप हमारे पास भेजते रहे ऑन 5599 एंड आपको हम शामिल करने वाले हैं राहत फ़तेह अली खान जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसके डबल पास वाले ड्रॉ में और ओनली द करेक्ट एंट्रीज विल गो इनटू द ड्रॉ. तो अगर आप सही तरह से मैसेज भेजते हैं RFK लिखकर उसके बाद द नेक्स्ट लाइन इन द सॉन्ग जो हमने आपसे पूछा है और उसके बाद अपना नाम लिखकर भेजते हैं. That's the way that you are supposed to send your messages to me on 5599. तो आखिरी बार आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं गाने का छोटा सा पार्ट है. नेक्स्ट लाइन इस गाने में क्या आता है ये आपको हमें बताना है.

5599 पर आरिफ गए, इसके बाद क्या लाइन आता है, अपना नाम लिखकर भेजिए। हमारे पास जल से रितु है, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज हमें मिल चुका है। रिया, थैंक यू सो मच, आपका भी मैसेज आ चुका है। सनी है एंड स्वास्तिका स्वामी जी हैं, आपको भी हम शामिल कर रहे हैं। नील है और एफाज जी, आपका भी हम इस्तकबाल कर रहे हैं। और हम पायल है, अमीरा है, आपका मैसेज हमें मिल चुका है। फाल्गुनी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। विनीत जी है, ईमान खान है और हेमंत, आप ने गलत जवाब दिया, आपने गाने का नाम लिखा है, नॉट द नेक्स्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग, तो आपका नाम ड्रॉ में नहीं जाएगा। गौर से आप गूगल कर सकते हैं भाई, बहुत सारे आपके पास रिसोर्सेज है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वेलिंगटन से आशीष जी शामिल हुए हैं, थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए। फारा नजीब जी हैं एंड किसी ने नाम नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखोगे तो ड्रॉ में नहीं जाओगे। प्रशांत चौहान जी हैं, आपने भी सही जवाब दिया है एंड अगेन बंदे ने दो बार मैसेज किया है विदाउट द नेम। खैर, अगर आप चाहे तो दोबारा मैसेज करें विथ योर नेम, आरएफ के नेक्स्ट लाइन इन द सॉन्ग एंड योर नेम एंड सेंड इट टू 5599। थोड़ी देर में बाइट्स एंड बेंटा, इसमें क्या होता है, हम कुछ राइवल टीम्स के बारे में बातें करेंगे जो भाई जब भी मैदान पर आते हैं तो आग लगा देते हैं। तो ऐसी दो टीमें कौन हो सकती है आपके हिसाब से, कौन सी वो दो टीमें हैं जो जब भी खेलते हैं बस एक दूसरे को हराने गिराने और पछाड़ने में लग जाते हैं, ना सिर्फ प्लेयर्स ही बल्कि द फैंस एज वेल। तो इसके बारे में हम बातें करेंगे बस थोड़ी देर में।

0: या बीच को चाहते हो, या ब्रीज, मोर, एज, रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Jen didn't think she needed a DVS system.
2: Oh, I've got insulation in that.
1: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
2: Ah, yeah.
1: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
4: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today. Flooring.

0: You're listening to Chikash.
1: All right, जो सवाल हमने आपसे किया था, the song was बोल ना हल्के हल्के and the line आ नींद का सौदा करे एक ख्वाब दे एक ख्वाब ले. इस गाने को अगर आप बारीकी से सुनते हैं तो the poetry in this song is so beautiful. थोड़ी देर में इस गाने को भी आपके लिए हम पेश करेंगे. तो जितने भी लोगों ने RFK लिखा था, एक ख्वाब दे एक ख्वाब ले और फिर अपना नाम लिखा था, आप सभी के नामों को हमने ड्रॉ में शामिल कर दिया है एंड यू आर इन टू विन डबल पासेस फॉर दिस ऑसम ऑसम नाइट हैपनिंग ऑन द 25th of July एट द ट्रस्ट एरेना, जहां पर जैक स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान इन कॉन्सर्ट. अ नाइट फील्ड विद टाइमलेस हिट्स, पावरफुल वोकल्स, सोल स्टिरिंग कव्वाली जो आपको एकदम से मंत्र मुग्ध करने वाली है. तो मार्क द डेट 25th July एंड इसके लिए टिकट्स अगर आपको ख़रीदना है, वेल ख़रीदना ज़रूर है क्योंकि ये सभी बिक जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा. dryTickets.com पर आपको जाना है और टिकट्स अपने नाम कर लेने हैं. इस गाने के बाद में हम आपसे पूछने वाले हैं हमारा दूसरा सवाल. और अगर आपने मूवी टोस्टर देखी है, उसका क्लोजिंग सीन अगर आपने देखा है, तो शायद सवाल का जवाब देना आपके लिए आसान हो जाएगा. अगर नहीं तो फिर अपने कान के पर्दों को आपको पॉलिश करना है और एक आवाज़ को पहचाननी है. बहुत ही वाइब्रेंट एक्टर ये है, अच्छे अच्छे फिल्मों में इन्होंने काम किया है, उनकी आवाज़ आपको हम सुनाएंगे और आपको पहचानना होगा बस 4.5 मिनट्स में.

ऑलराइट, तो हमारा अगला सवाल ये है अबाउट फ्रॉम द फिल्म टोस्टर, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, और इसके क्लोजिंग सीन्स में दो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स मिलकर आए हैं. एंड पहला है राजकुमार राव, तो आसान नहीं करेंगे आपके लिए. दूसरी आवाज़ को आपको पहचानना है और इनका नाम लिखकर हमारे पास भेजना है 5599 पर. पहले आपको इस एक्टर का नाम लिखना है और फिर अपना नाम लिखना है. एंड डू लेट मी नो कि अभी आप कहां पर है और हमें आप किस जरिए से सुन रहे हैं. इज़ इट 104.2 FM या फिर रोवा, ये आपको ज़रूर हमें बताना है. तो ऐसा करते हैं, पहले आप लिखे 104.2 FM या फिर रोवा, विच एवर मीडियम यू आर लिसनिंग मी थ्रू. उसके बाद में लिखे अपना जवाब एंड कहां से आप हमें सुन रहे हैं और

0: ठीक है सर।
1: हाँ ये
2: एक ही पीस बचा है, सब फिल्म स्टार ये लगाते हैं, हीरो हीरोइन विलेन।
1: अच्छा
2: 25,000। मशीन
1: ₹6 का लगा दे।
3: अगर आपने इस मूवी को देखा है, फॉर मी पर्सनली बहुत दिनों बाद एक अच्छी मज़ेदार जिसमें कॉमेडी भी थी और यू नो नथिंग टू सीरियस, इस मूवी को आप देख सकते हैं ऑन नेटफ्लिक्स। लेकिन इस सीन में राजकुमार राव के साथ में कौन नज़र आए हैं ये आपको बताना है 5599 पर। पहले आप लिखिए कि किस जरिए से आप हमें सुन रहे हैं, इज़ इट 104.2 FM या फिर रोवा, और फिर एक्टर का नाम, अपने नाम के साथ आप कहां पर है ये आप भेजिए हमारे पास 5599 पर।

0: लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। पर ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.

0: Get it sorted with cheap-ass deals. Save 40% on a 12-centimetre living foliage Monstera Deliciosa, now $9. And get over 50% off a Gutter Boss spouting protector, now $7. Limited stock, cheap-ass deals. End Sunday at Mitre 10.
1: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
2: Give mum the gift of sport with epic deals from Rebel, like 30% off Lorna Jane and 30% off running and fitness accessories. Or give mum the choice with a Rebel gift card. End Sunday at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
3: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
4: Kabhi bhi, kahi bhi. Mast malang jo.
5: Yo.
4: Radio Pub. Yeah. You're listening to Chikash.

Alright, so this was the hour of bites and banter, जहाँ पर एक बहुत ही मशहूर rivalry के बारे में हमने बातें करनी थी. And जिस दो टीमों के बारे में मैं सोच रहा था, किसी ने वही दो टीमों का नाम हमारे पास भेजा. And Rose from Mangere, आपने कहा about the state of origin Maroons और New South Wales Blues के बीच में जो rivalry है, इसको देखने के लिए हर साल thousands and thousands of लोग टिकट्स लेते हैं और ऑनलाइन या फिर स्काई स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी मीडियम हो, ढेर सारे पैसे भरकर और इस गेम का मज़ा लेते हैं. स्टेट ऑफ ओरिजिन सीरीज़ ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है और अगर आप नहीं जानते हैं तो न्यू साउथ वेल्स की ब्लूज़ की टीम है और क्वींसलैंड की मरून्स, ये दो टीमें ही इस स्टेट ऑफ ओरिजिन में खेलती है. हर साल तीन खेल होते हैं और इन तीन खेलों में जो टीम ज़्यादा पॉइंट्स से जीतती है उसको विनर घोषित कर दिया जाता है. 30 साल लगभग हो चुके हैं इस खेल को एंड क्वींसलैंड मरून्स हैव बीन वेल देव हैड द अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस जो इन्होंने जीते हैं और बहुत सारे लोग हैं हु यू नो सपोर्ट ईदर द ब्लूज़ और द मरून्स. एंड NRL, जहाँ तक यूनियन की बातें करें, NRL इज सोर्ट ऑफ अ मोर ब्रूटल गेम इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड फिजिकलिटी. अगर आप देखते हैं यूनियन एंड लीग गेम्स तो आप जानते होंगे कि हम क्या बातें कर रहे हैं.

0: बाई चांस बिंदा में आपको हम बता रहे थे अबाउट द स्टेट ऑफ ओरिजिन जिसमें क्वींसलैंड मरूंस और न्यू साउथ वेल्स ब्लूज, इसके हिस्ट्री के बारे में बातें करें तो ऑल इन ऑल अभी तक जितने भी खेल हुए हैं बिटवीन द टू टीम्स, हर साल 3 खेल होते हैं. क्वींसलैंड मरूंस दे होल्ड द हिस्टोरिकल एज इन द एनुअल स्टेट ऑफ ओरिजिन सीरीज, जहां पर 25 सीरीज विंस हैव गोन टू न्यू साउथ, सॉरी 25 सीरीज विंस मरूंस ने हासिल किए हैं एंड ब्लूज हैव वॉन 17. ये खेल 1980 से शुरू हुआ है और लास्ट ईयर वाज द लेटेस्ट वन. इस साल फिर दोहराया जाएगा स्टेट ऑफ ओरिजिन और इसके भी लिए लोग उतनी ही उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इसी महीने 27 मई को द फर्स्ट लेग ऑफ स्टेट ऑफ ओरिजिन खेला जाएगा बिटवीन ब्लूज एंड मरूंस. उसके बाद में 17 जून को विल बी द सेकंड मैच एंड 8 जुलाई को विल बी द थर्ड मैच इन द स्टेट ऑफ ओरिजिन. नाउ लुकिंग एट द हिस्ट्री, सीरीज विंस को देखें, क्वींसलैंड 25 ब्लूज 17, दो बार ये सीरीज ड्रॉ हुआ है. टोटल गेम्स प्लेड एंड वन, क्वींसलैंड ने 71 गेम्स को जीता है, न्यू साउथ वेल्स ने 61 गेम्स को जीता है, दो गेम्स ड्रॉ में एंड हुए हैं. और ये जो ओरिजिन रूल है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980 अलाउइंग प्लेयर्स टू रिप्रेजेंट देयर होम स्टेट रादर देन देयर क्लब स्टेट, ट्रांसफॉर्मिंग द राइवलरी. तो एनआरएल में जितनी भी टीमें हैं इनमें से सभी प्लेयर्स अपने होम टाउन या फिर होम स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दे गो बैक टू मरूंस या ब्लूज. और इसमें अभी तक मोस्ट पॉइंट्स और ट्राइज के बारे में बात करें, द 2000 सीरीज होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पॉइंट्स, 104 पॉइंट्स को हुए थे एंड ट्राइज 18 ट्राइज को हुए थे इन द ईयर 2000. तो आप मरूंस के फैन हैं या ब्लूज के फैन हैं ये ज़रूर हमें बताइएगा. सवाल जो हमने आपसे किया था उसका भी जवाब हमारे पास आप भेजते रहें. वी वर टॉकिंग अबाउट द मूवी टोस्टा और मूवी टोस्टा के एंडिंग क्लोजिंग सीन में आए थे राजकुमार राव के साथ में एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर. उनकी आवाज़ आपको पहचानना है. 5599 पर जल्द से आप हमारे पास जवाब भेजें.
1: ठीक है, मैं भी आता हूँ. बस एक अच्छा परफ्यूम दिखाओ.
2: यस ये सर 5000.
1: थोड़ा अच्छा वाला दिखाओ यार.
2: अच्छा 10000.
1: ये तुम्हारा बेस्ट है यहाँ का?
2: नहीं, इससे ऊपर है सर. बेस्ट दिखाऊं? हाँ, ये एक ही पीस बचा है. सब फिल्म स्टार ये लगाते हैं, हीरो हीरोइन विलन.
1: अच्छा
2: 25000. मशीन
1: 6 रुपए का लगा दे.
0: तो किन की आवाज़ ये है ये आपको बताना है. कहाँ पर आप हैं और किस जरिए से 104.2 FM या फिर रोवा से हमें आप सुन रहे हैं, तो पहले 104.2 FM लिखे या फिर रोवा लिखे. किस दो लोगों ने 102.4 FM लिखा है. भाई दैट इज़ वेरी शॉकिंग कि अगर आप 102.4 पर हमें सुन पा रहे हैं. मुझे भी नहीं पता था कि ये पॉसिबल हो सकता है. किसी ने लिखा है कि 102 से आप हमें सुन रहे हैं. वेल दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो 104.2 FM लिखकर भेजे या फिर रोवा लिखकर भेजे, उसके बाद में एक्टा का नाम और अपना नाम भी लिखकर भेजे या फिर आप कहाँ पर है, आई लव टू नो. परेश कामदार जी है, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. सचिन आपका भी मैसेज हमें मिला है. फंगरे न्यूजीलैंड में कीर्ति जी है, थैंक यू सो मच आपको शामिल होने के लिए. निमेश जी है बॉटनी में, वेलिंगटन में है. आशीष ऑकलैंड में है. पलक थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. और राजीव जी हैं, आपका भी मैसेज हमें मिला है. रोशन साथ में शांदना आपका भी मैसेज हमें मिला है. सुनील है और रितु है, आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं.
3: 1 2 3 4.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: तीन बजकर एक मिनट हो चुका है, मैं हूं जिकाश एंड 104.2 FM और रोवो पर आप रेडियो पब का मजा ले रहे हैं। इफ यू हैव जस्ट जॉइंड, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं, हार्दिक इस्तकबाल कर रहे हैं। कहां पर हैं आप, ज़रूर हमें बताइएगा। 5599 पर जानकर हमें अच्छा लगा। एंड अगर आप देश से बाहर है, गेट इन टच विद अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स। हम FM का फेसबुक पेज है, इंस्टा है, मेरे खुद का फेसबुक पेज पर आप मुझे लुकअप कर सकते हैं। इंस्टा पर गेट इन टच, लेट मी नो कि आप कहां पर है, कहां से सुन रहे हैं, आपके साथ कौन कौन है। ये बात हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी मेहनत कर रहे हैं हमारी तरह टू गेट इन टच विथ अस एंड टू लिसन टू 104.2 FM। तो ज़रूर यूं ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए ताकि और भी बेहतरीन कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहें, जैसा आपको पसंद हो या फिर उससे बढ़ चढ़ कर हम कोशिश करते रहेंगे टू ब्रिंग यू द बेस्ट एंटरटेनमेंट वी कैन।

0: yo.
1: Big Radio Pub.
2: Now, if you follow Super Rugby, to aap shayad jante honge ki Moana Pacifica, this year might be their final year in Super Rugby Pacific, kyunki things are not going really well for them. So, the fight to save Moana Pacifica Super Rugby franchise from extinction has taken a significant turn with the association that represents Pacific Island players putting its support behind a takeover from the Kanaloa Consortium. ये वो ग्रुप है जो इन्होंने अपना बिड लूज कर दिया था फॉर द ओरिजिनल लाइसेंस 6 years ago फॉर मोआना पैसिफिका. इनका कहना है कि दे हैव द मनी टू कीप मोआना अलाइव एंड पे ऑफ द क्लब्स डेट्स. लेकिन कनालोआज चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ट्रेसी अथिगा, इनका कहना है कि दे आर बीइंग स्टोन वॉल्ड बाय द करंट ओनर्स दैट इज पैसिफिका मेडिकल एसोसिएशन एंड द न्यूजीलैंड रग्बी प्लेयर्स एसोसिएशन. बहुत सारा पॉलिटिक्स हो रहा है भाई. विच प्लेड अ की रोल इन सेटिंग अप द टीम. तो पैसिफिका मेडिकल एसोसिएशन एंड न्यूजीलैंड रग्बी प्लेयर्स एसोसिएशन आर सॉर्ट ऑफ पुशिंग फॉर द एंड ऑफ मोआना पैसिफिका. लेकिन अगर मोआना पैसिफिका को सर्वाइव करना है, मिस अतिका सेज दोज टू एंटिटीज कैन नॉट कंटिन्यू टू ब्लॉक अ पॉसिबल डील इन ऑर्डर टू अवॉइड फाइनेंशियल स्क्रूटनी. आई पर्सनली वांट मोआना पैसिफिका टू स्टे इन द कंपटीशन क्योंकि दे ब्रिंग आउट हेल्थी कंपटीशन बिटवीन देम एंड द रेस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजेस. आपका क्या कहना है इसके बारे में, डू लेट मी नो. इसके लिए एक पिटीशन भी शुरू हुआ है, petition to keep Moana Pacifica alive in the Super Rugby Pacific series. Lekin ye petition kaise kaam karega, kinko petition jayega, does the government step in, yes or no, it's sort of in grey waters.

0: साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
1: Whether mum's into movies, meals or mountain adventures, Gift Station has a gift card for that. Choose from event cinemas, Uber or MacPack and give her exactly what she loves this Mother's Day. Shop the range at giftstation.co.nz.
2: Find the perfect Mother's Day gift at Bunnings. Bring your mum in, have a coffee and have a look around. We've got gifts for the do-it-self mum, the crafty mum and the gardening mum. Get mum a gift she'll love from Bunnings.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: Moisture और ventilation का problem लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: If you're serious about solar energy, switch on to Trade Depot. They stock the world's leading solar panels, inverters and batteries. Trade Depot specializes in powerful full house solar systems ranging from $10,000 to $20,000. Shop solar at Trade Depot for high quality solar systems with installation available nationwide. TradeDepot.co.nz.
7: Final days of Big Save's massive whiteware washout. Do you need a new washing machine, dryer, fridge or dishwasher? Then come and see us today. We've got New Zealand's best value whiteware deals, like get a Panasonic 6kg washing machine, only $5.49, or a Samsung 236-litre fridge, now only $7.99. Plus, we have stock. Take them home today, only at Big Save.

0: Yo.
1: Radio Pub. Yeah. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
0: That's right, you're humming with me and आपका साथ देता हुआ यूं ही शाम छह तक हम यहाँ पर रहने वाले हैं. कार्यक्रम में अभी आपने ट्यून इन किया है. सवाल हमने आपसे किया था अबाउट द मूवी टोस्टा. इसके एंडिंग सीन में राजकुमार राव के साथ में एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर नजर आए थे एंड देयर वाज नन अदर देन प्रतीक गांधी. थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया है. और लेट्स हेड इन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. खेलकूद के बारे में हम बातें कर रहे हैं एंड खेलकूद के बारे में बातें हो और आईपीएल के बारे में बातें ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है. टेबल्स की ओर देखें तो सनराइज हैदराबाद दे आर लीडिंग द पैक विथ 14 पॉइंट्स. 11 मैच इन्होंने खेला है आउट ऑफ विच 7 में इनकी जीत हुई है. पंजाब किंग्स दे आर ऑन नंबर 2 विथ 13 पॉइंट्स. और रॉयल चैलेंजर्स ये 12 पॉइंट्स के साथ थर्ड पोजिशन पर है. राजस्थान रॉयल्स दे आर ऑल्सो ऑन दे आर ऑन फोर्थ पोजिशन विथ 12 पॉइंट्स एज वेल. लेकिन पॉइंट्स या फिर रन्स जितने इन्होंने बनाए हैं इसमें डिफरेंसेस होने के कारण दे आर ऑन नंबर 4. और गुजरात टाइटन्स दे आर ऑन नंबर 5. नाउ द क्वेश्चन हियर इज रॉयल चैलेंजर्स ये कहाँ की टीम है एंड डोंट से इंडिया. रॉयल चैलेंजर्स इंडिया में कहाँ की टीम है. 5599 पर आप अपना जवाब हमारे पास भेजे. ऑल्सो डू राइट 104.2 FM या फिर रोवा. कहाँ से कैसे आप हमें सुन रहे हैं 104.2 FM या फिर रोवा स्पेस. अपना आंसर अपना नाम लिखकर भेजे 5599 पर. रॉयल चैलेंजर्स ये कहाँ की टीम है. इस अगले गीत में शामिल कर लेते हैं पाल है पापा छोए छोए में. बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में इस गीत को ज़रूर आप एंजॉय कीजिएगा. पवन है पवन कुमार जी. यू आर ट्रैवलिंग एट द मोमेंट और कुछ दोस्त ऑनलाइन हमारा कार्यक्रम का मज़ा ले रहे हैं. रानल चंद है आपको शामिल कर रहे हैं प्लस ईश्वर दयाल जी इन ओटाहूहू आपको भी हम शामिल कर रहे हैं इस ट्रैक में.

0: Yo.
1: Big Radio Pub. You're listening to Chikash.
2: एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था ऑन स्टफ एंड दिस इज़ अबाउट होमलेस एंड रफ स्लीपर्स. नाउ आई डू सिंसियरली बिलीव कि दे नीड हेल्प ताकि सिटी को क्लीन अप किया जाए. आई एम नॉट सेइंग कि बस यूं ही इनको एक तरफ से कूड़ा करकट की तरह बटोर कर कहीं और छोड़ दिया जाए. दे शुड बी सपोर्टेड एंड हेल्प्ड टू मूव आउट ऑफ द सिटी सेंटर एंड गेट इन टू टेम्प्ररी अकोमोडेशन, या फिर इनको ट्रेन किया जाए ताकि ये खुद के लिए कमा सके खा सके. क्योंकि ऐसा ही कुछ सेंटिमेंट्स शेयर किए गए हैं बाय साइमन ब्रिजेस हु वांट्स देम टू मूव समवेयर एल्स. ये बहुत ही नाराज़ है. ही इज़ फ्यूरियस. मिनिस्टर्स आर टेकिंग देयर टाइम पासिंग द न्यू लॉज. ये सोचते हैं कि इनको हटाने के लिए जो लॉज पास होने चाहिए बहुत जल्द से पास हो जाना चाहिए. एंड इनका कहना है कि आई डाउट देयर आर मेनी पीपल हु वॉक थ्रू देयर सीबीडी एंड एन्जॉय सीइंग पीपल स्लीपिंग ऑन द स्ट्रीट, बेगिंग फॉर मनी, आस्किंग फॉर फूड और लिविंग इन अ हट मेड फ्रॉम ट्रॉलीज, पैलेट्स एंड कार्डबोर्ड. बात भी सही है, ये देखने में ठीक नहीं लगता है, स्पेशली इन द सुपर सिटी. फॉर सम इट्स हार्ट ब्रेकिंग, अदर्स इट्स डिस्गस्टिंग, एंड फॉर मेनी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इट्स अ प्रॉब्लम. दे वॉन्ट मूव समवेयर एल्स, एनीवेयर एल्स समवेयर पीपल कांट सी. The beehive solution is to introduce move-on orders. These would beef up police powers to literally move on people from city streets and either fine them or send them to prison if they don't pay or move. अब भाई streets पर रहते हैं, पैसे तो है नहीं, इनको fine करके क्या हासिल होगा? One of the biggest cheerleaders for these new powers is the CEO of the Auckland Business Chamber, Simon Bridges, whose members have been lobbying him to do something about it. Aur waqai mein, if you own a business, if you have a coffee shop, aapke coffee shop ke aage koi banda ekdam se wahi par reh raha hai, and no, not judging anyone. If you have been to the city, you know what I'm talking about. Bahut ganda kafi jagah par smell karta hai, and you do not want to go in those areas which brings harm to the companies. But is it just as simple as moving them on? Doesn't that just make it someone else's problem in a different part of the city rather than fixing the root of the problem? Ye sawal ka jawab dhoondna bahut hi zaruri hai. Bridges, inhone agree kiya hai to discuss the proposal over a beer at Stuff's makeshift pub and to provide some balance to his arguments. I reached out to a number of organizations to join us. The head of the NZ Council of Civil Liberties couldn't make it because he's not based in Auckland. The Auckland City Mission also declined, and lawyer Daniel Legalis, who's lived on the street, been to prison and knows these issues inside and out, also pulled out on the last minute. तो लोग इसके बारे में बातें नहीं करना चाहते हैं, तो solution कैसे सामने आएगा? अगर और कुछ अपडेट्स आते हैं तो ज़रूर आपके साथ में हम शेयर करेंगे. वैसे IPL के बारे में हम बातें कर रहे थे. रॉयल चैलेंजर्स ये कहाँ से बिलोंग करती है इन इंडिया? सिर्फ एक ही सही जवाब हमारे पास आया है. कम ऑन.

OFC प्रोफेशनल लीग के तहत जो मैच हो रहा है बिटवीन ऑकलैंड फुटबॉल क्लब एंड बुला एफसी, ऑकलैंड फुटबॉल क्लब अपना बदला निकाल रही है ईडन पार्क पर। ये खेल हाफ टाइम पर पहुंच चुका है। AFC ऑकलैंड फुटबॉल क्लब इज लीडिंग बुला एफसी बाय 2-0। आज शायद नॉट द डे फॉर द बुला एफसी बॉयज़।

0: Radio Pub.
1: ईडन पार्क पर ऑकलैंड फुटबॉल क्लब और बुल एफ सी के बीच में खेल जारी है एंड सेकेंड हाफ का खेल शुरू हो चुका है. 5 मिनट्स इनटू द सेकेंड हाफ, मतलब 50 मिनट्स का खेल खत्म हो चुका है एंड स्टिल ऑकलैंड एफ सी लीडिंग बाय 2-0. गोल्स बनाए गए थे इन द 7th मिनट बाय जे बिडोइस एंड 36 मिनट में बाय ओलियरी. तो क्या बुला एफ सी कम बैक कर सकती है या फिर ऑकलैंड फुटबॉल क्लब will further extend their lead into the second half. इस पर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे right here on हम. सवाल हमने आपसे किया है कि रॉयल चैलेंजर्स आईपीएल की टीम है, इंडिया से है, इंडिया में कहां से बिलोंग करती है रॉयल चैलेंजर्स. सिर्फ 3 ही सही जवाब आए हैं. किसी ने पंजाब लिखा है. भाई आई डोंट थिंक यू आर फ्रॉम इंडिया एंड आई डोंट थिंक यू फॉलो आईपीएल. थोड़ा सा रिसर्च कर लो, एकदम से अंधेर में तीर मत चलाओ. रॉयल चैलेंजर्स किस जगह से बिलोंग करती है इन इंडिया. 5599 पर अपना जवाब हमारे पास आप भेजें.

0: weather update.
1: Let's take a quick look at the weather. और ओकलैंड सेंट्रल के लिए बताया गया है कि बादल छाए रहेंगे, शाम और रात्रि के समय कुछ गंभीर बारिश हो सकती है। ओवरनाइट टेम्परेचर 13 डिग्रीज रहेगा और दिन में तापमान 20 डिग्रीज तक जाएगा। लेकिन अब शाम होने लगी है तो अब मौसम और भी ठंडा आप महसूस करने लगेंगे। संडे 10th मई के लिए बताया गया है दिन में टेम्परेचर 19 डिग्रीज रहेगा, ओवरनाइट टेम्परेचर 13 डिग्रीज। कल ओवरनाइट बारिश होने वाली, यानी कि सुबह होते तो बारिश होगी, सुबह के समय भी बारिश होगी, लेकिन दिन में और शाम के समय बादल घिरे रहेंगे। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ नाइस संडे फॉर मदर्स डे। रेडियो पब का सिलसिला जारी है एंड 4:03 हो चुके हैं। मैं हूं जिकाश, आपका साथ देता चल रहा हूं अभी से लेकर, दिन में 12 से लेकर हमने आपका साथ दिया है राइट टिल 6 PM। यहां पर हम रहने वाले हैं टू कीप यू अपडेटेड अबाउट ऑल दैट्स हैपनिंग अराउंड यू। इसके अलावा हम आपका साथ देने के लिए दोबारा आ जाएंगे कल शाम 6 पर इन संडे नाइट मेलोडीज, जहां पर वी विल बी सेलिब्रेटिंग द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपकी मम, मेरी मम, हमारे साथ जो माताएं हैं जो बिछड़ चुकी हैं, उनके आदर्शों को हम सेलिब्रेट करेंगे। The expecting mothers, इनको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो अब वेरी स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है टुमोरो नाइट विथ मी ऑन संडे नाइट मेलोडीज। सुबह से हमारे साथी भी आ जाएंगे टू विश यू एंड योर मम वेरी हैप्पी मदर्स डे। आई होप आपने जो प्रिपरेशंस किए हैं इट्स ऑल गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, एंड टुमोरो यू आर एबल टू सरप्राइज योर मम जिस तरह से आपने प्लान किया है। आई होप देयर आरंट एनी स्पॉयलर्स, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको स्पॉइल करना, जिनको राज खोल देना, स्पेशली जब सरप्राइज प्लान किए जाते हैं और कहते हैं कि या कोई से बताना नहीं। तो डोंट बी दैट पर्सन, डू नॉट स्पॉइल एनी सरप्राइजेस फॉर एनीवन, जस्ट प्ले अलोंग। आप सभी का स्वागत कर रहे हैं ऑन हम 104.2 FM एंड ऑन रोवर। मैं हूं जिकाश, मेरा सलाम और नमस्ते आप तक पहुँचे।

0: Chikash.
1: Yo.
0: Big Radio Pub.
1: Flyaway Frenzy, have you taken part in this competition yet? Yes or no? Well, if not, you are missing out. Because return your ticket, we want to give you a for an exceptional holiday in Fiji. आपके AFAs के prices या फिर cost को अगर हम कवर कर ले तो आपको शायद $800 to $1,500 की बचत हो जाएगी and then that money you can spend on whatever you want while you are holidaying in Fiji. तो इसके लिए बहुत ही आसान है Rova app. ये होना बहुत ही ज़रूरी है and every weekday सुबह 8 बजे 11 बजे दिन में 1 बजे और शाम 5 बजे के बीच हम आपको स्पेशल कोड वर्ड्स देते हैं वंस यू आइडेंटिफाई द कोड वर्ड्स बहुत ही इजीली बहुत ही क्लियरली आपको हम बताएंगे वंस यू गेट द कोड वर्ड्स यू गेट ऑन टू रोवा और हम फ्लाईवे फ्रेंजी में जाकर उस कोड को आप डालें विद इन 60 मिनट्स ऑफ अस रिवीलिंग द कोड एंड यू विल बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ जहां पर आप एक रिटर्न या टिकट जीतेंगे टू गो टू फिजी अब यहाँ न्यूजीलैंड में तो ठंडी पड़ने लगी है तो ऐसे में यू विल गेट एन अ नाइस एस्केप टू बी इन फिजी और ये कॉस्ट दिस विल बी ऑन अस तो भाई रोवा ROVA डाउनलोड इट नाउ अगर अभी तक आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है IPL की ओर हम देखें तो हमने सवाल आपसे किया था कि रॉयल चैलेंजर्स किस जगह की टीम है बेंगलुरु अगर आपने लिखा है थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए चार पांच लोगों ने जवाब लिखा लेकिन नाम नहीं लिखा कि भाई आप कौन हैं आर यू अ बॉट एनीवेज तो हमने कहा कि IPL के बारे में हम आपको जानकारी देंगे एंड लुकिंग एट IPL ये बहुत ही और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है एंड क्या आपकी टीम आर दे डूइंग वेल एज फार एज राउंड रोबिन खेल की बातें हम करते हैं आज सुबह तड़के खेल हुआ बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में इसमें KKR की जीत हुई बाय 8 विकेट्स टुमारो मॉर्निंग एट 2 AM राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के मध्य में खेल होने वाला है दिस विल बी मैच 52 आउट ऑफ द 74 मैचेस दैट आर गोइंग टू बी प्लेड इन द IPL

0: keep calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

अभी आपने एड सुना अबाउट रिसाइकलिंग प्रॉपर्ली कि अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और इनऑर्गेनिक वेस्ट है किस तरह से आप को रिसाइकल करना है. तो भाई इनऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्शन दिस इज़ अ सर्विस जो ऑकलैंड काउंसिल रन करती है और आपको जानना है कि कहाँ पर आप इनऑर्गेनिक वेस्ट लेकर जा सकते हैं या फिर किस तरह से आप कलेक्शन बुकिंग्स कर सकते हैं. ये आपको मिलने वाला है इन्फॉर्मेशन ऑन aucklandcouncil.govt.nz के वेबसाइट पर या फिर आप जस्ट ऑनलाइन इनऑर्गेनिक कलेक्शन ये सर्चअप करें ऑन गूगल. यू विल गेट टू द लिंक जहां पर आप जाकर इनऑर्गेनिक कलेक्शन बुकिंग्स कर सकते हैं. एंड अगर आपको कहीं पर रबिश डम्प्ड दिखता है यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट इट बाय कॉलिंग ऑन 0800 NO DUMP दैट इज 0800-663-867 पर. बी रिस्पॉन्सिबल रेसिडेंट्स, बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और खुद भी आप अच्छी तरह से रिसाइकल करें और कहीं पर अगर कूड़ा करकट आपको दिखता है तो डू रिपोर्ट इट ताकि काउंसिल के लोग उसको ठीक तरह से डिस्पोज कर सके. खेल जो हो रहा है बिटवीन ऑकलैंड FC एंड बुला FC ये ख़त्म हो चुका है. अभी कुछ मिनटों पहले ये ख़त्म हुआ. ऑकलैंड FC हैव थम्प्ड बुला FC एंड वन बाय 2-0. तो दैट्स हाउ दिस हैज़ एंडेड. और नेक्स्ट मैच इस पर भी अपडेट्स हम आपको पहुंचाते रहेंगे बस थोड़ी देर में.

In a few minutes, Highlanders or Wanderers ke beech mein khel shuru ho jayega. Actually, in 2 more minutes. And TAB ke website par hum dekhe to TAB is paying 137 for a dollar for Highlanders to win, and Wanderers ke liye $1 par $3 aap jeet sakte hain if Wanderers wins and you bet on Wanderers. Kya lagta hai aapko? Is gonna be Highlanders or Wanderers? Highlanders have been good this year. हाँ, कुछ मैचेस में क्वेश्चनेबल गेम इन्होंने खेला है, लेकिन अगेंस्ट द वॉरियर्स आई सीरियसली होप हाइलैंडर्स कम आउट विक्टोरियस. लास्ट 5 मैचेस में देखें तो हाइलैंडर्स हैव वन 2 out of 5 एंड वॉरियर्स हैव आल्सो वन 2 out of 5 लास्ट मैचेस. तो क्या होगा इस पर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे एज दिस मैच प्रोग्रेसेस.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day. Because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
2: Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.

0: Yo.
1: Big Radio Pub. Yeah. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
2: All right, खेल शुरू हो चुका है between Waratahs and Highlanders, and Highlanders are leading Waratahs by 12 points to nil. और ये बहुत ही खुशी की बात है for the people of New Zealand, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश की टीम ही जीते. Sorry, it's 14 points to nil, क्योंकि they have just converted the conversion. तो 12 मिनट का खेल हो चुका है, 14 points to nil से Highlanders हरा रही है Waratahs को. आप हमें ये बताएं for this hour, the final hour जो आने वाला है, कि Highlanders New Zealand के किस सिटी से belong करती है. Do you know? Well, if you do, अपना नाम लिखे और फिर हमें बताएं कि Highlanders जो Super Rugby Pacific की एक टीम है, ये New Zealand में कहां से belong करती है. 5599 पर अपना जवाब हमारे पास भेजे. देखते हैं कि आप हमारे न्यूजीलैंड टीम्स और हमारे न्यूजीलैंड सीरीज़ के बारे में कितना जानते हैं. हाइलैंडर्स ये किस सिटी से बिलोंग करती है.

मैं पहले कभी इतनी खुश नहीं रही, ना ही इतनी कंफ्यूज्ड। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ, कहाँ पता नहीं, लौट कर आऊंगी पता नहीं, हो सके तो मुझे माफ कर देना।

0: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: of Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: सवाल हमने किया है कि हाइलैंडर्स किस सिटी से बिलोंग करती है. इन किसी ने वाइकाटो लिखा है. वेल वाइकाटो से तो द माइटी चीफ्स है. नो दैट इज रॉन्ग. तो आप पता लगाए, छानबीन करें, जांच पड़ताल करें एंड आप बताएं कि हाइलैंडर्स जो सुपर रग्बी पैसिफिक की एक टीम है फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये किस रीजन से या फिर किस सिटी को बिलोंग करती है न्यूजीलैंड में. 5599 पर अपने नाम के साथ अपना जवाब हमारे पास भेजिए. किसी ने सही जवाब लिखा है लेकिन नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं. ऑकलैंड लाइव ये सेलिब्रेट कर रहा है एनजेड म्यूजिक मंथ फॉर द मंथ ऑफ मे. फ्राइडे 1 मई से शुरू हुआ है, संडे 31 मई तक अलग अलग जगहों पर ऑकलैंड सिटी सेंटर में कई सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं. कई सारे पेड प्रोग्राम्स हैं, कई सारे फ्री टिकटेड प्रोग्राम्स हैं. तो इसके लिए आप विज़िट करें ऑकलैंड लाइव, इसका वेबसाइट है oaklandlive.co.nz एंड वहाँ पर जाकर आप बारीकी से जान पाएंगे कि कौन कौन जगह पर कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं और किस तरह से आप एंट्री प्राप्त कर सकते हैं. जैसे कि फ्रॉम द पिट, माइटी फैट फ्रेडीज ड्रॉप, मालन विलियम्स भी फीचर कर रहे हैं, मॉर्निंग पीपल्स 10th बर्थडे और होम ब्रियो प्रेजेंट्स लास्ट वीक, ये सभी कुछ हो रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई.

0: Radio Pop.
1: Harsal, you get an opportunity to dispose of your inorganic rubbish by having council to come and collect it from your yard. So, agar hum areas ki dekhe, mainland Auckland ke liye early June is the scheduled release, aur iske liye aap booking kar sakte hain online. Waiheke Island mein September mein hota hai, Aotea, Great Barrier Island ke aaspaas September mein, aur Rakhino Island mein September के महीने में इनऑर्गेनिक कलेक्शंस होता है. तो कीप अ टैब ऑन दिस, ऐसा ना हो कि आप मिस आउट कर दे. जब वक्त नज़दीक आएगा आई विल सडनली लेट यू नो कि आपको बुकिंग्स कर लेनी है. हाइलैंडर्स कहाँ से बिलोंग करती है? उर्मिला, थैंक यू सो मच. ओम नायकर, थैंक यू, आपने भी सही जवाब दिया है. फिलहाल द हाइलैंडर्स हैव एक्सटेंडेड देयर लीड, 21 पॉइंट्स से लीड कर रहे हैं हाइलैंडर्स, 21 points to 7 over Waratahs.

0: Playing Bollywood's biggest hits. Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल.

0: Chikash.
1: Yo.
0: Big Radio Pub.
1: Super Rugby ka khel jari hai between Highlanders and Waratahs. Highlanders 26, Waratahs 7. Aur idhar National Rugby League ke antargat khel shuru ho chuka hai between Dragons and Knights. 14 minutes of play aur idhar Knights jeet rahe hain over Dragons. Wollongong showground, Wollongong mein ye khel khela ja raha hai. Iske alawa कल खेल हुआ बिटवीन रूस्टर्स एंड टाइटंस जिसमें रूस्टर्स की जीत हुई 28-12 से काउबॉयज की हार हुई एट द हैंड्स ऑफ ईल्स 33-30 से रैबिटर्स और शार्क्स आज 7:30 PM पर खेलने वाले हैं सी ईगल्स और ब्रोंकोस 9:35 PM टुनाइट खेलेंगे स्टॉर्म और वेस्ट टाइगर्स टुमोरो 4 बजे पर खेलने वाले हैं शाम को और फिर राइडर्स और पैंथर्स ये खेलेंगे इन द फाइनल मैच ऑफ वीक 10 ऑफ NRL इस हफ्ते हमारी टीम वॉरटास ये बाय है तो दे माइट बी गेटिंग द मच नीडेड रेस्ट आफ्टर दे ऑसम विन लास्ट वीक टेबल्स की ओर देखें तो पैंथर्स आर लीडिंग द पैक विथ 16 पॉइंट्स उसके ठीक पीछे वॉरियर्स है ऑल्सो एट 16 पॉइंट्स लेकिन पॉइंट्स डिफरेंस में थोड़ा पीछे है पैंथर्स से हमारी वॉरियर्स रूस्टर्स एट 16 पॉइंट्स अगेन पर लीडर्स से बहुत ज़्यादा पीछे है अगर आप कंपेरिजन करना चाहे पैंथर्स का पॉइंट्स डिफरेंस है 169 वॉरियर्स है 108 पर और रूस्टर्स है 67 पर रैबिटर्स है नंबर 4 पर विथ 12 पॉइंट्स वेस्ट टाइगर्स 12 पॉइंट्स के साथ 5th पोजीशन पर है

0: Yo. Big Radio Pub. Yeah. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
1: Mother's Day song brought to you by
0: Indelible Homes, your building experts. Known for subdivisions, visit indelibleHomes.co.nz. BFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google BFSL today. A must food. 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center.
2: हमारे सभी ऑसम ऑसम स्पॉन्सर्स की ओर से हम वेरी हैप्पी मदर्स डे विश कर रहे हैं इन एडवांस टू ऑल दी मदर्स आउट देयर जो हमें सुन रहे हैं जो कल हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे जो कल सरप्राइज होने वाले हैं अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लेडीज आउट देयर जिन्होंने एक सुंदर सा संसार सजाया है अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से अपना त्याग से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल नानीज आजीज दादीज mums and to be mothers as well jo sapne piro rahi hai for a lovely family in the near future very happy mothers day to all this song goes out to shivi ki mom hai bimlesh kumari ji arshia and vidisha ki mom hai sandhya ayan ki mom hai sandhya and ahana aur anaya ki mom hai meenal aapko hum shamil kar rahe hain in this next track

0: बेस्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM.
5: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
8: कहानी ऑफ इनडेलिबल होम्स।
9: Mum's the word and Briscoe's is the place to send them this Mother's Day weekend. With a mum-believable 30 to 50% off store-wide and incredible savings on gifts. Mum's the word and Briscoe's is the place. See online for T's and C's.
10: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. सिर्फ 44,990 plus on-road से शुरू. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: रेडियो पब का मज़ा आप ले रहे हैं एंड अपडेट्स अब तक हम पहुंचाते जा रहे हैं सुपर रग्बी में NRL में और OFC प्रो लीग इसका आज सेकंड मैच ये खेला जाएगा एट 6:30 PM दिस इज सेट सेकंड मैच साउथ मेलबर्न फुटबॉल क्लब और साउथ आइलैंड यूनाइटेड के बीच में होगा 6:30 PM से और वहीं पर उससे पहले गो मीडिया स्टेडियम में आज खेल होने वाला है द फर्स्ट लेग ऑफ द सेमीफाइनल जो ऑकलैंड फुटबॉल क्लब खेलने वाली है इन ए लीग एंड दे आर प्लेइंग अगेंस्ट एडिलेड यूनाइटेड होस्टिंग द फर्स्ट राउंड और उसके बाद में 9:40 PM पर सिडनी फुटबॉल क्लब और न्यूकासल जेट्स आमना सामना करने वाले हैं.

0: Yo.
1: Big Radio Pub. हम पर आपके साथ हैं जिकाश.
2: हम पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ और अब तो मेरा जाने का वक्त हो चुका है. लेकिन जाने से पहले ऑसम न्यूज़ है. धुरंधर 2 द रिवेंज This will be released on Jio Hotstar in India on May 14th or May 15th. बहुत ही जल्द. आज है 9th May, बस 6-7 रोज में. और उसके बाद this will be also available worldwide on Netflix. तो अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे थे like me, बस थोड़ी ही दिन और बाकी है. एंड वील ऑल इन्जॉय दिस ऑन नेटफ्लिक्स. हमारा यहाँ से जाने का समय हो चुका है. जाने से पहले क्विक ब्रीफ लुक हम लेते हैं विद मैचेस ऑन हैंड. हाइलैंडर्स आर प्लेइंग विद वोरेटास 28-12 से अभी इनकी जीत हो रही है. इसके बाद 7:05 PM पर मोआना पैसिफिका और हरिकन्स खेलने वाले हैं. और उसके बाद ब्रम्बीज और फोर्स विल बी बैटलिंग इट आउट एट 9:35 PM. NRL में मैचेस की ओर देखें तो फर्स्ट हाफ का खेल बस खत्म ही होने वाला है बिटवीन नाइट्स एंड ड्रैगन्स. नाइट्स आर बैशिंग ड्रैगन्स बाय 32-0. इसके बाद में 7:30 PM पर रेबिटोज और शार्क्स आमना सामना करेंगे. एंड देन 9:35 PM पर सी ईगल्स और ब्रोंकोज ये खेलने वाले हैं. टुमारो स्टॉर्म और वेस्ट टाइगर्स खेलेंगे 4 PM पर. रेडर्स एंड पैंथर्स प्लेइंग द लास्ट मैच ऑफ वीक 10 इन NRL टुमारो आफ्टरनून एट 6:05 PM. आई लीग में शाम 6 पर आज गो मीडिया स्टेडियम पर ऑकलैंड फुटबॉल क्लब इज होस्टिंग एडिलेड यूनाइटेड इन द फर्स्ट लेग ऑफ द सेमीफाइनल. उसके बाद सिडनी फुटबॉल क्लब न्यूकासल जेट्स के साथ में खेलने वाली है एट 9:40 PM. तो ये सारे मैचेस होने वाले हैं. एंड देन OFC प्रो लीग के तहत साउथ मेलबर्न फुटबॉल क्लब विल बी प्लेइंग अगेंस्ट साउथ आयरलैंड यूनाइटेड एट 6:30 PM एट ईडन पार्क. तो ये सारे मैचेस आज हो रहे हैं जिसकी अपडेट्स मैं डालूंगा ऑन आवर सोशल्स. उसे आप फॉलो करते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ में जुड़े रहें 104.2 FM पर एंड ऑन रोवा एज वेल. मिलते हैं कल शाम 6 पर संडे नाइट मेलोडीज में, जहां पर मदर्स डे हम सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेटिंग ऑल दी मदर्स ऑफ हम FM एंड अराउंड द वर्ल्ड. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. हैव अ ग्रेट Serena night and a great Mother's Day ahead. Milte hain sham 6 par. Tab tak ke liye mera namaskar.

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का है।

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम अगर आपको कभी भी लगे कि हमने ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन किया है तो आप इसकी शिकायत ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से कर सकते हैं और जानकारी के लिए bsi.govt.nz पर लॉग इन करें।
2: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.

0: लेस्बियन।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंडेड न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
3: Mum's the word, and Briscoe's is the place to send them this Mother's Day weekend. With a mum-believable 30 to 50% off store-wide and incredible savings on gifts. Mum's the word, and Briscoe's is the place. See online for T's and C's.
4: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
5: हाँ, अच्छा?
4: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
5: Mrs. Singh.
6: अरे बम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33।

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तू क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ड्राइविंग यू होम द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी हां किसी ने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Bedzaras Manuko and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Don't miss this, it's the final days of Big Save's massive bed sale. Whatever size of bed you're after, from single to California King, we have it. And today we're having a massive bed sale. Queen beds from only $7.99. Get a free mattress protector with our Pacific California King bed, only $17.99. And get a single bed for only $2.99. We've got thousands of beds in stock. Take home a new bed today, only at Big Save.
7: Mum's the word, and Briscoe's is the place to send them this Mother's Day weekend. With a mum-believable 30 to 50% off store-wide and incredible savings on gifts. Mum's the word, and Briscoe's is the place. See online for T's and C's.
0: The DJ Mix, only on Hum.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है। 6 to 10 a.m.
4: From a change in geopolitics to changes in the weather to changes in the All Blacks, change is constant, and so is the news on this station. Your source for everything changing in association with RNZ News. Change is in the air.
5: ब्यूटीफुल हाउस प्लांट से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और गार्डन के लिए पसंद है, सब मिलेगा माइटन मेगा वेस्टगेट और हैंडरसन में। एवरीथिंग टू मेक मम स्माइल एक्सेप्ट द होममेड कार्ड, बट यू कुड लेट मम डिसाइड विद अ माइटन गिफ्ट कार्ड एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हैंडरसन।

0: अपने जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
2: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.

0: CJ. Rocking.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।

0: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, और टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.

Whiskey Donald Hardy.

0: सेल्फ इनटू।
1: रैम्बो का नाम सुना, टर्मिनेटर का, और सलमान भाई, इन तीनों को एक मिक्सी में डाल, तीन चार बार घुमा, घूम घूम घूम, जो ग्लास भर के मिल्कशेक निकलता है ना,

0: get money, get cash.
1: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
2: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
3: The DJ mix only on Hot.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits.

What?

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल, डाउनलोड रोवा टू लिसन हम 80s जुकबॉक्स।
1: इंतहा हो गई इंतजार की। हम

0: Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budget Gandhi.
0: Night Flight.

करती है वो तितलियां साथ रखती है मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है इस प्यार को खोने नहीं दूंगा तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा खुशी के आंसू और बात है लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest hits. Budget Gandhi. Night Flight.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दूसरी को बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दूसरी तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Playing Bollywood's biggest hits. Night Fly.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या है?
3: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे

0: Fortune.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: चाहे आप हम के दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना स्टाइल के, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं।
2: गो बनाना चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
1: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
2: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: Playing Bollywood's biggest hits. Budget guy.

पतंग संग उड़ गया बचपन, झनक झनक मन डगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसत मसके क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे।

0: रखे पेड़े, रेवड़ी में रखवाली चाट तरी बाकी लाएगा। अरे मैं हुक्म करूँ तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाऊं।

0: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

आप सुन रहे हैं 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ आपके साथ. एंड इफ यू लिसनिंग फ्रॉम 104.2 FM, ऑब्वियसली आप जब गाड़ी से निकलते हो या फिर आप रेडियो ऑफ करते हो देन यू वॉन्ट बी एबल टू लिसन टू अस. बट इफ यू लव टू लिसन टू अस स्टिल, आप रोवा डाउनलोड कर सकते हो, ROVA, जहाँ पे आप हमें नॉन स्टॉप 24/7 सुन सकते हो. Anywhere and everywhere. And saying that, हमारे Rova app में we have a game called Jurdle, जहाँ पे भी आप cash जीत सकते हो every day. So basically, आपको guess करनी है कि ये कौन सी keyword है. There's like a hint, and then there might be 3-5 letters, yeah, for 2 words, and you just have to guess. And if you find the answer, if you correctly guess the answer in the first go, आपको bonus entry भी मिलेगा for the $100 giveaway. And yeah, if you keep playing every day, aapka chances aur bhi behtar hota hai. So it is ROVA, the app, and game ka naam hai Churdle.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
2: Mum's the word, and Briscoe's is the place to send them this Mother's Day weekend. With a mum-believable 30 to 50% off store-wide and incredible savings on gifts. Mum's the word, and Briscoe's is the place. See online for T's and C's.
3: Purani gaadi aur mehenga fuel kab tak chalega? Switch to Leap Motor C10 aur B10 Ultra Hybrid aur Electric. Sirf 44,990 plus on-road se shuru. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane aur Botany. T's and C's apply.
4: Brewing good vibes, Sunday style.
5: Sunday breakfast on Hum.
6: आप सुन रहे हैं हम 4.2 FM और मैं हूं आरजव के साथ। इंडिया के बोल्डेस्ट कॉमिक मुनावर फारूकी इज कमिंग टू ऑकलैंड तामाकी मकोरो एट ब्रूस मेसन सेंटर ऑन 23rd ऑफ मे इसी महीने। एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ फनी, यू नो इट्स गोना बी सो फन, रॉ रियल अनफिल्टर्ड कॉमेडी। एंड ही इज लाइक वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इंडिया में, एंड लाइक you know, international level ki comedy, and but also still like very home, very very familiar, very our humor. So yeah, aapko ye full live experience chahiye, then if you want to go book tickets, it's live on www.ticketmaster.co.nz. ya fir aapko ek chance hai hamare paas, aap tickets jeet sakte ho, double pass wo bhi. Aap hamare Facebook page mein jaakar, there's a post जहाँ पे आपको टैग करनी है आपकी फ्रेंड जिसको, यू नो लाइक व्हेन यू सी अ फनी रील एंड यू आर लाइक, अभी मुझे ये फ्रेंड को, यू नो यू हैव दिस पर्टिकुलर पर्सन दैट यू ऑलवेज शेयर द रील टू, येस वी वॉन्ट यू टू टैग दैट फ्रेंड हु इंस्टेंटली कम्स टू योर माइंड व्हेन वॉचिंग द रील। सो या एंड आफ्टर दैट, आफ्टर वंस यू कॉमेंट आपकी फ्रेंड, यू आर इन द ड्रॉ टू विन अ डबल पास। सो डू इट फास्ट, क्योंकि कल 11th of May the draw will be done and one of you will be winning the double pass to Munawar Faruqi.

आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ाब के साथ. एंड इफ यू लव टू विन अ रिटर्न एयर टिकट टू फिजी, यस फिजी में द पैराडाइज एंड एस्केप दिस विंटर फ्रॉम न्यूजीलैंड, देन ऑल यू हैव टू डू इज यू नीड अ रोवा ऐप, ROVA. और एवरी वीक डे मंडे टू फ्राइडे हमारी हम स्पेशल कोड विल बी प्लेड आउट फ्रॉम 8 AM के आवर में 11 AM, 1 PM और 5 PM. सो ये 4 hours में यू विल गेट 4 स्पेशल कोड्स. एंड वंस यू हियर द कोड आपके पास 60 minutes है टू एंटर द कोड ऑन रोवा टू बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ. And yeah, that's it. And who knows, we might call out your name and you might be flying to Fiji. Jiha, Fiji. So the 4 hours that you want to listen out, so you can hear this, you know, the special code from Monday to Friday is 8 o'clock, 8 a.m. in the morning, 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Good luck.

0: लो, थोड़ा सा जिलो थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जिलो थोड़ा।

आप सुन रहे हम ऑन 4.2 FM और मैं हूँ अर्ज आपके साथ. नेक्स्ट अप आई विल बी शेयरिंग विद यू व्हाट बॉलीवुड मूवीज आर कमिंग टू न्यूजीलैंड सून. स्टे ट्यून्ड.

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब
3: बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The breakfast show with Vijay and Pooja
4: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex aur ye hai meri guest Sarah.
6: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स।
5: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
6: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
5: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
6: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
7: You could be losing around $100 a year through sneaky drafts in your home. Using draft stoppers or window seals is a simple way to keep the heat in. Search EECA, that's EECA, get winter ready.
8: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
9: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ अर्जब के साथ। एंड बॉलीवुड मूवीज जो रिलीज होने जा रहा है न्यूजीलैंड के थिएटर्स में, वी हैव सम एक्साइटिंग मूवीज कमिंग सून थिएटर्स में। इस फ्राइडे को मई 15th में पति पत्नी वो दो, इट्स लाइक अ सीक्वल टू द फर्स्ट वन, पति पत्नी वो फ्रॉम 2019। उसके बाद मई 21st में वी हैव थ्रिशम 3, इट इज मलयालम मूवी, इसमें सब टाइटल्स है दो। And we have May 22nd, May Chand Mera Dil. Oh my God, I'm excited for this one. Ye movie mein we have Ananya Pandey or Lakshya. It's a Dharma Productions, obviously. I'm very excited. And uske baad, ek hafte ke baad, we have David Dhawan returning with an amazing movie, I hope. I'm excited. It looks very promising. It is Hai Jawani To Ishq Hona Hai with Varun Dhawan, obviously with his son, the dad-son duo. Bahut exciting for movie, I think, movie watchers. I'm excited. So many exciting movies coming through. So yeah, these are some of the movies that will be releasing in the next month. Aapko kaun si movie ke liye excited ho? Let me know, 5599 per. I personally am excited for Chand Mera Dil and then second, Hai Jawani To Ishq Hona Hai.

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: AG the Gangster.
1: आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजे आपके साथ एंड इट इज टाइम फॉर सॉन्ग डेडिकेशन मदर्स डे स्पेशल. सो द यू नो आप स्टिल सेंड कर सकते हो 5599 पर क्योंकि आई एम टेकिंग इन डेडिकेशंस ऑल मॉर्निंग. दिस इज अ मैसेज फ्रॉम कार्तिक टू हिज मम लता माधवन जी एंड द मैसेज रीड्स, even though there are 12,000 kilometers between us, your prayers reach me in Auckland every single morning. Happy Mother's Day to my world. Mama, missing your cooking today more than ever. Aapka favorite song, aapke liye.

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: meter.
1: Up to New Ham 104.2 FM or Meho Arzav Kisath. And it is time to do some Mother's Day dedication. Kyuki aaj Mother's Day hai. And quick, happy Mother's Day to all the beautiful mums out there. And ye special message Sahil se hai to his auntie, Pushpa auntie. So the message goes like this. Happy Mother's Day, Pushpa auntie. आपकी पॉजिटिविटी और वो एवरीथिंग वो बी फाइन वाली एडवाइस मेरे लिए हर दवा से भी बढ़कर है. थैंक यू फॉर बीइंग द हार्ट ऑफ आर फैमिली हियर इन न्यूजीलैंड. फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली. ढेर सारा प्यार. ये गाना आपके लिए.

आप सुन रहे हम ऑन 4.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड इट्स टाइम टू डू द मदर्स डे डेडिकेशन. और ये मैसेज है फ्रॉम नील फ्रॉम लोअर हट. एंड उन्होंने लिखा है, हैप्पी मदर्स डे टू संगीता माँ. मम्मी आपकी स्माइल मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. भले ही हम न्यूजीलैंड में सेटल हो गए हैं, पर मेरा दिल आज भी आपके हाथ के खाने के लिए तरसता है. आई मिस यू माँ. दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

है हम रिवाइंड. सो ये रोवा की इतनी सारी प्लेलिस्ट में ये नंबर वन म्यूजिक स्टेशन है क्योंकि आप सब ने बहुत सारा प्यार देकर सुनकर इट हैज़ बिकम इट्स लाइक द नंबर वन चार्ट्स में. एंड सो इफ यू लव यू नो 60s एंड 70s के गाने देन हम रिवाइंड इज़ योर स्टेशन. या फिर आपको मे बी नॉन स्टॉप 80s के गाना सुनना है देन वी हैव हम 80s की जुक बॉक्स. और हमारे पास भजन्स भी है एक्चुअली दुनिया की पहली 24/7 फ्री फीजी भजन वी हैव दिस ऑन रोवा. इसका नाम है फीजी भजन्स एंड यू कैन एन्जॉय द बेस्ट अमेजिंग भजन्स फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एंड एनी वेयर. वी ऑल्सो हैव पंजाबी हिट्स सो यू कैन जस्ट हैव द बेस्ट बैक टू बैक पंजाबी हिट्स. एंड नाम है चढ़ती कला पंजाबी हिट्स एंड वी हैव फ्रेश न्यू लिस्ट एंड अमेजिंग बैंगर्स देयर. सो वी हैव a playlist for anyone and any age. आप हमारे रोवा की ऐप में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो.

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox. Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Let's keep it light and bright on Sunday Breakfast. Zaika to feel ho. Tickle your taste buds.
2: आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. और नेक्स्ट अप आई विल बी टेकिंग यू इन ऑकलैंड में ही बट टू अ डिफरेंट कंट्री की कुजीन जो आप इंजॉय कर सकते हो. आई थिंक दैट्स द फायदा ऑफ यू नो हम एक मल्टी कल्चरल कंट्री में रह रहे हैं एंड देन यहाँ पे ढेर सारी कल्चर्स है, ढेर सारा डिफरेंट खाना. एंड यू नो आई थिंक दैट्स सो अमेजिंग कि यहाँ के वी कैन ट्राई सो मैनी कंट्रीज की खाना and don't even have to buy those expensive flights to go there. I know, authentic bolte hai, but sometimes if you find the good one, it is as good as the home country. So, yeah, stick around. Main aapko ek exciting location mein introduce karungi.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: ब्यूटीफुल हाउस प्लांट से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और गार्डन के लिए पसंद है सब मिलेगा माइटन मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन में। एवरीथिंग टू मेक मम स्माइल एक्सेप्ट द होममेड कार्ड बट यू कुड लेट मम डिसाइड विद अ माइटन गिफ्ट कार्ड एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
2: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
3: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Sunday breakfast.
1: Zaika, jo feel ho. Tickle your taste buds.
2: आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. और इट्स टाइम फॉर टू डू अनदर मदर्स डे डेडिकेशन. और ये डेडिकेशन है फ्रॉम कबीर एंड उन्होंने लिखा है, मम्मी हैप्पी मदर्स डे. न्यूजीलैंड की लाइफ कितनी भी बिजी हो पर आपका सुकून वाला चेहरा देख कर सारी थकान मिट जाती है. थैंक यू फॉर बींग माई एंकर इन ऑकलैंड. ये गाना सिर्फ आपके लिए.

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड ऑनेस्टली इस साल बहुत सारी अच्छी मूवीज रिलीज हो चुका है, इवन लाइक हिंदी या फिर इंग्लिश. इंग्लिश में भी रिसेंटली मैंने डेविल वेस्ट प्राडा 2 देखा था, विच इज़ एन आइकॉनिक सीक्वल मूवी टू द फर्स्ट वन. एंड ऑल्सो माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल बहुत अच्छा बनाया हुआ है, स्पेशली कास्टिंग एक्टर्स आर अनरियल. एंड हिंदी में भी लाइक बॉलीवुड मूवीज आर कमिंग इन स्ट्रॉन्ग टू, एंड देर सम एक्साइटिंग मूवीज कमिंग सून इन द न्यूजीलैंड थिएटर्स. सो स्टार्टिंग ऑफ विद मे 15th में पति पत्नी है वो दो. It's a sequel to the 2019 hit rom-com. May 21st mein we have Drishyam 3, May 22nd mein Chand Mera Dil. I'm very excited for ye wali movie kyunki isme Ananya Pandey aur Lakshya bhi hai. So I'm very excited for ye iski release. I'm definitely gonna go weekend mein hi kyunki I'm that excited. June 5th mein Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Very excited for ye movie bhi kyunki isme Varun Dhawan hai, and also it is David Dhawan ki comedy movie, and who doesn't love that? मुझे बहुत पसंद है, सो आई एम एक्साइटेड ये मूवी के लिए भी. एंड जून 5th में सेम डे में ही वी हैव अनदर मूवी कमिंग आउट विच इज़ कॉल्ड बंदर, एंड इट इज़ अ थ्रिलर मूवी, वेरी डार्क एंड अ बिट ऑफ मसालेदार अपेरेंटली. सो ओह माय गॉड, लुकिंग फॉरवर्ड. आपको कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो, लेट मी नो 555 पर.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ। सलमान खान की ये नई फोटो जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, इसमें ही इज विद अ फैन एंड वाव, 60 में भी ही लुक सो very fit and he looks like he's lost weight and according to some news articles likha hai ki 7 to 8 kilos he's lost for his next film that we will be seeing him teaming up with actress Nayanthara and it's actually a superhero film so I'm very excited kyunki itna zyada superhero movies to nahi hai Bollywood mein so I'm very excited to see Salman Khan ki nayi film and he has like really like damn worked out gotten really lean you know like Salman Khan usually bulky hai isme he looks very lean so he must have really cut out stuff and like haven't done like a lot of like muscle wali like strength stuff I don't know much kyunki main health fitness to nahi hu but wow I'm excited for the new movie jo release hoga whenever but I hope we get to see more like teasers or yeah for like looks of it

Absolutely, Ham 104.2 FM. I'm Mehu Arzaf Kisad, and it's time to do some Mother's Day dedication here on Ham. So, a dusra message. Hey, let's go through some text. Yeah, this one. This one's from Ria. So, Ria ne apni mummy Nidu ke liye likha hai. मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है यहाँ की ठंड में आपकी गरम गरम चाय और प्यार बहुत मिस करती हूँ यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड हैप्पी मदर्स डे माँ

0: Power through Mess with Morning Fresh.
1: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Brewing good vibes, Sunday style.
3: Sunday breakfast on Hum.
4: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. फ्राइडे को एक नई मूवी रिलीज हुआ है, बॉलीवुड मूवी. इसका नाम है दादी की शादी एंड इट लुक्स वेरी मज़ेदार वाली मूवी. ये मूवी में नीतू कपूर है एंड ऑल्सो कपिल शर्मा. एंड द बेस्ट पार्ट इज एक्चुअली आई लव इट ये कि रणबीर कपूर की सिस्टर ऑल्सो नीतू कपूर की बेटी रिधिमा कपूर इज ऑल्सो इन दिस मूवी एंड इट्स एक्चुअली हर डेब्यू फिल्म. सो congrats to her debut. I'm looking forward to this movie. It looks like a very mazedar movie kiki. Grandma is also, you know, trying to do a marriage thing and then uska granddaughter ki wedding mein compromise hota hai and all that. So I'm looking forward to this movie. It's already released, so if you'd like to go watch it, it's out now.

0: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
1: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहां जाना चाहिए। aucklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ, अच्छा
3: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
9: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
10: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
9: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
10: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
11: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: Weekdays 6 to 10 a.m. Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Good afternoon, I'm Suzette with the latest at 12. Two people remain in hospital after being seriously injured in an alleged robbery in Hamilton overnight. A group entered a premises on Tuikariama Road in Dinsdale shortly before 10 last night, demanding cash and personal items. A 17-year-old has been arrested, with police searching for the remainder of the group. Several countries are preparing to evacuate their citizens from the cruise ship hit by a deadly strain of hantavirus, as Real Taylor reports.
13: The Honduras is due to anchor in the Canary Islands this afternoon. Five European countries, including Germany and Ireland, have confirmed they're sending planes to evacuate their nationals, while the US and UK says they will for non-EU citizens whose countries are unable to. There are six confirmed cases of the virus so far, with another two suspected.
12: A person has died after being hit by a plane in the US. A Frontier Airlines flight reported striking a pedestrian on the runway at Denver Airport. And Southlanders are being reminded to use dry wood and get their fireplaces cleaned this winter to prevent the region being blanketed in severe pollution. To sport, a big game for the Wellington Phoenix this afternoon in the second leg of the A-League semi-final at Porirua Park. Coach Bev Priestman wants her players to enjoy the game.
14: It's the moment we want to create, and we've got to go out and enjoy ourselves and stay together.
12: Kick off at 2:30. And the Cavaliers have beaten Detroit 116-109 in the NBA to cut the Pistons' lead to 2-1 in the Eastern Conference Series. The Lakers face the Thunder in Los Angeles this hour in the Western Conference.
7: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
15: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
16: सूचित किया जाता है कि बा फिजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय गोपाल की पत्नी ओकलैंड के मास्टर अशोक, विनेश कुमार, सलेशनी देवी, अंजला देवी तथा ब्रिस्बन ऑस्ट्रेलिया की विजयंती देवी की मां ग्लेंडिन ओकलैंड की गंगा माता की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार रविवार यानी आज अगले घंटे 1 बजे एन्स फ्यूनरल होम 11C बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 46 हामिल रोड ग्लेंडिन जा सकते हैं या मास्टर अशोक को 0211795459 पर कॉल कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि बा फिजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय गोपाल की पत्नी ओकलैंड के मास्टर अशोक,
17: विनेश कुमार, सलेशनी देवी, अंचला देवी तथा ब्रिस्बन ऑस्ट्रेलिया की विजयंती देवी की मां ग्लेंडिन ओकलैंड की गंगा माता की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार रविवार यानी आज अगले घंटे 1 बजे एम्स फ्यूनरल होम 11C बोल्डरवुड प्लेस वीनी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 46A हामेल रोड ग्लेंडिन जा सकते हैं या मास्टर अशोक को 021-179-5459 पर कॉल कर सकते हैं।
15: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
18: Playing Bollywood's biggest hits. Just chill.
7: You're listening to Avineet.
17: Kia ora, bula, salam, namaste, sat sri akal.